तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले।

आखण पाहे। वड्डा न हुवै घाट न जाय, ना उह मरै न हुवै सोग, देदा रह न चुकै भोग।

मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संग

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जा

सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाओ करिया ऊडे ऊडा वैसै कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सत बल जाइय तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा।

सब दुख विसारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौं तुद बिन।

रहाओ, सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़े।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा।

संस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायु, देव दैत जच्छन उपजायु, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जाबुद करक करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है।

कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं भूल राजा हव बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उवार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताई सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब होई, दुष्ट छाह छव सक।

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर
1: तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रा, तुम माधु पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख कने, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल।

कीरत की गुरु रामदास रखो एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो सुख हो टल गुर सेविया

हर को नामकिन माए उदारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरय, हर को नाम कूट पापर हरय, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जप तो हो सुखिया, लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है, अन कर माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जी मार गयो जात अकेला, तय हर नाम संगोत सुहेला, ऐसा नामन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूट तो नहीं कूट लखबाही, नाम जपत है पार पराही, अनक बिगन जय आय सिंगार है, हर का नाम तत्काल उदार है, अनिक जोन जन्म है मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कबू न तू वै, हर का नाम कूट पाप को वै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध कैसंग, जी मार के गन जाहे न कुसा, हर का नाम हुआ संग तोसा, जी पैडे मंद गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहा पंथ तेरा को न सुजानू, हर का नाम तहनाल पुछानू, जय महाप्यान तप्त बो काम, तय हर के नाम की तू पर छाम, जात्रिका मन तुझ आकर कह, कह नानक हर हर अमृत भर कह, भक्त जना की वर्त नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ऊट, हर कह नाम उदरे जन कूट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कह हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मंथन रंग रत्ते रंगे कह, नानक जन कह बिरत बबे कह, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कह नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कह नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, उत्पोजन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भव करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तीन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत ऋदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संगवड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जिन कोए, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेके सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग वन मध्य फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, माँ उदास भी सर थीवै, अगन माहे होमत प्राण, कनिक सुव है वर भूम दान, नवली कर्म करे बहुआसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमकर शरीर कटावै, ताओ भी होमै मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर ते छुट्टै, गर्भ गुमान नमन ते हुट्टै, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तू वह बहु देह अनीत, शुद्ध का हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पथत बहु मूच, बहुत सियान जम का पव व्यापै, अनेक जतन कर तृष्ण ना त्रापै, एकने कगनी बुझै, कूट उपाव दरगनी सिजै, छूट सुनायु पयाल, मुहि व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सुदगावै, जे को अपनी शोभा लूरै, सास संगे हो मैं छूरै, जे को जन मरण ते डरै, साजना की सरणी परै,
जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रदान साध संजा का मिटे अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गणिय सब ते ऊंचा जा का मन हो सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पिख है सगल सिर साजना सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप उन नहीं लिपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मानो सगल कटा को देव दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हूँ आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपू जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार याने आंसू प्रभ सदा संभाल जिनकी यात स्थित रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूलते कवन दस्तानी जिन तू सासवार सी गारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पयाओ पर साख सैन मुख पयाओ बैठ को दैन हे वो निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले हो तो नानक सी जय जय प्रसाद तारू पर सुख बसै सुतप्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीनि हस पाव करनि तरसना तिसै त्यागवर संगरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक काढ़ लिहो प्रव्यापे आदंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार चाकी सेवा नव नित पावै तास्यो मूड़ा मन निहलावै जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावे दर गहमान तिसे बिसारे मुग्ध जान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लीप उतारे धोए गर्द प्रीत पसम संग हुए अंधकु मैं पतद विकराल नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान सुनान अंतर व्यापै लोभ सुहा अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह अथाहा जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समाप्त सोना अंदा कैसे मार्ग पावे कर गहले होड़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा निष्कही है तू समझे पूरा कहाँ विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ करमाने मने प्रतीत काल नया वै मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रोह याहू युक्त बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा यंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गातमित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लाग अनुसवाए नानक कहु न सी जई बिन नावे पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु कारण बिखूट गवावे एक भी न दे दस पीर ले तो मूड़ा कहु कहा करे जिष्ठा कुर्सियों ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व तोग नानक तिन पाया
अगंत सब अपनी दे रास खात पीत वर तैन दुलास अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीताप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न हुए जिसकी वस्ति से आज्ञा रथ है प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया सो रंग लावै उ बिन सहु मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लपट रहो थे अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै केहि मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नान काप ले लाई मिठिया तान तान कुटम सुबाया मिठिया ओ मैं ममता माया मिठिया राजो बन धन माल मिठिया काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्तरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोमु अभिमान मिथ्या पशु पर कर तुगमान स्त्री पग साज की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ सुनोभावै मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय वृथि सागत की आर जा साच बिना कहूत सूचा वृथा नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरण दिन रहन वृथा बिहाई मेघ बिना ज्यो कीती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु पर बीन बार भेख न काहू भीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन्मे मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जान अपना किया या पह मान या पह आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव से अनुसगल के रहत सब क जाने आत्म की रहत जिस पाव है तिस लय लड़ लाए थान तनंतर रहा समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लाभ है तिसको सिमरत परम गत पाव है जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना ठपैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाट पैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तू सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दरगह मान पावै नानक पद छेती घर जावै जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सा सा सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वस्थ सुवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मुलक धना राख पुरो प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत्य सह त्याई तिसे त्याई जो एक अलखाई आऊहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनै कर्ण नाद जे प्रसाद पिखै विस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਸਭ ਪ੍ਰਵਤਿਆ ਗੁਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਾਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਪੂ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨੂ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰਨਾਥ ਨਾਨਕਿਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾਥ ਸਲੋਕ ਹਗਮ ਅਗਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਜਨਾ ਕੇ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖੂ ਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਕੋਤ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਬਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਖਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਈ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਕਤ ਹੁੰਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤੁਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਨੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣੇ ਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਭੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੁਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਯਹਾਂ ਵਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਭੇਖਿਆ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਕ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉ ਬਸਤਾ ਕੂ ਖੋਦੈ ਕੁ ਚੰਦ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਣਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਆਤਮਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ
ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कुपरियासु ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुई सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी कर प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खुजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारू नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव ने मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब पर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उतार है जो अंतर नाम सर्व में पिक है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगुन निस्तार है अष्टपति मिथिया नाही रस न परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परतर रूप न भेख नेतर साध गिटैल संसंगेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना मन ते टर इंद्री जित पंच दोख ते रहत नान कूड मध्य को ऐसा परस वैष्णु सोजी सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए पेन कर्म करत हो वह नि कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहु बल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब पर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक वैष्णु परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनस सगल अपरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सासन पापा मन खूबै तुष भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन पर बुद्धै राम नामा तुम्हें सुधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै बुद्धि जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुख मैं जानै स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होई सा सुन पावै जन कोई कर कृपांतर उतार है पस प्रेत मुक्त पात्र को तार है सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाइये धर्म नानक तिस मिला जिस लिखिया तुर कर्म जिसका नाम पार ब्रह्म का निवास जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन भाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूची परे सगल संगातम दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हरक तैसा उसोग सदानंद तै नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी बिकाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक गुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाउ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फनोग पसर आप अंतरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के

कई कोड नभ नाम त्यावै नान करती कंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभेगा तुम निकोर कई कोट पर दर्भ को ही रह कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश पर माहे जि जित लाहो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर व्यक निप जाए कई कोट पवन पानी वै संतर कई कोट देश भो मंडल कई कोट शशियर सूर नखेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपना सूतार है नानक जिच भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र कई कोट किए रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख के नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगा सब ते निरह सब उते दूर नानका पलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव अमरह कई कोट भोजन नी फिर है कई कोट बैठते ही खाहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट कीर्तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय भाणा तय तय राखे नानक सब किस प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को हो आप सो प्रसन्न नानक तीजन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदय के कंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते हो ब्रह्मा समाता कांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नित्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्मरा सुख सह संभावै अपने जन को साथ साथ संभारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारण है जल थल मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस भावै सोई हो किन में ताप तापन हारा अंतने किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानुगत पावै प्रभावै था पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्री राखै प्रभावै था हर गुण भाकै प्रभावै था पथ दुधारै आप करै अपन विचारै दुआ सिरिया काप स्वामी खेलै बिकसे अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवरना आवै कहु मानुक ते क्या हुए आवे जुत छिपावे सोई करावे इसके हाथ हुई तो सब किछ ले जुत छिपावे सोई करे हन जानत भी क्या मैं रचै जे जानत अपना बचै पर मैं भूला दे दिस्तावे निमक माए चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भग दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट को खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै जाकू अपने करे बख्शीश ताका लेखा न गणै जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जीव जो तिस पावै सोई फुंथियो कबू ऊंच नीच में बसै कबू सोग हर करंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकाश प्यार कबू बीता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत्य करे बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेघारी नीच का साचा कबू अपकीरत महयावै कबू भला भला कहावै जो प्रभ राखै तिब ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कह कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मूल धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनिक जोन परमै परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभ पावै तिवै निचावै जो तिस पावै सोई

चितारो, जो कछ करे सोई सुख मानो, भूला काहे फिरै जान, कौन बसताई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पद छेती कर जाहे, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तजब मान लेहु मन मूल, राम नाम हृदय महतूल, लाद के संतै संचाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कै सब कुए, मुख उजल हर दर गै सोए, इहो वापार बिरला वापार है, नानक ताके सद बलिहार है, चरण साध के तुए तुए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध उपर जाइए कुर्बान, सा सेवा वडभागी पाइए, सा संग हर कीर्तन गाइए, अनिक विघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, उठ गई संतै दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवता दार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिस्काउ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रैनी, सब ते ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भग सुनिया त्यो लोए, चा कै हृदय को होए, सच करनी सच का की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृढ़ साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, श्लोक रूप नरेक नरंग किच, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन महराख, मानुके तू प्रीत त्याग, तिस्ते परै नाही किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोय, आपे भीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, साथ

तप में तपीशर दृष्ट में भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाके लीला की मित नाही सगल देव हारे अवगाही पिता का जन्म के जान पूत सगल परोई अपने सूत सुमा

ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करै एक रंग, नाना बिदकिनो विस्तार, प्रभ बनासी अहंकार, नाना चलत करे किन माहे, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बनत बनाई, अपने कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमृत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संगुदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बानी, सत पुरख सब माहे समानी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोय, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्टि सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर कै वचन पदार्थ लहे, कोई दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी।

चरण सत सत पर सुनहारु, पूजा सत सत सेवदारु, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सबतारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप रितै।

तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, है ते निरपो हुए पसाना, इस्ते उपजया तिस माहि समाना, बस्त माहि ले बस्त गडाई, ताको भिन्न कह न जाई, बूझै पूजन हार विवेक, नारायण मिले नानके, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक

दास को दे बटाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मित कोई न लखे, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया। निके केरे में कल रखे, भस्म करे लश्कर कोट लाखे। जिसका शासन काढ़ ताप, ताको रात देख कर हाथ। मानस जतन करत बहुपात, तिसके करत बिरते जात। मारण रखे अवर न कोई, सर्व जिया का रखा सोए। काही सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी। बारंबार बार प्रभ जपिय, पिय अमृत मंथन तृपिय। नाम रतंजन गुरमुख पाया, तिसके चवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रजो जन तृप्ताने, मंथन नाम नाम सुमाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जिन कै सब काम। बोलो जा जे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करे भगता तुम कह चाई, प्रभ अपने सो रहे समाये। जो हुआ होत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जिसकी महिमा कौन बकानू, जिसका गुण कह कना जानू। आठ पैर प्रभ सहजूरे कहो।

0: सूजन सर्व सुख का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे। अवस्यान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हुई तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद
1: सतगुर तिसका नाम, तिसके संग से गुजरे, नानक हर गुण गावत प्री। सतगुर से की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, से की गुर दुर्मत मिले, गुर बचनी हर नाम चरे। सतगुर से के बंधन काटे, गुर का सिख बकार से हटे। सतगुर से को नाम तन दे, गुर का सिख उठभागी है। सतगुर से का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर से को जी नाल समारे। गुर के ग्रह से जुरे, गुरु की आज्ञा मन में से, आपको कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा कर तो है नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जी साफ करे। नान सो सेव गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु किसी दे ना हो, अनक बार गुर को बजाओ। सर्वदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्माता, ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कहीं परम, सह स्याण लैण जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सबल दर्शन पेख पनीत, परस चरण का निर्मरीत, पेट संग राम गुरवे, पार की दर्गी गए। सुनकर बचन कर गाने, मन संतोख आत्म पत्याने, पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र, और दृष्ट पेख्यो संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नान जिस पावे ते लय मिलाए। जे बाएक उस्तर नेक, सात पुरख पूर्ण विवेक, पौष प्राणी, अगम्य गोचर प्रभ निर्भानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अन भगत बंधनित करे, चरण कम हृदय सुरे, सद बलिहारे सतगुरु अपने, नान जी प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। ਇਹ ਅਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪੈਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਕੋ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੇ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਦੁਖ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤੌਤ ਮੈਂ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਅੰਧ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਮਰ ਕੇ ਮਟਿਆ ਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪਦੇਸੇ, ਪਉ ਚੁਕਾ ਨਰ ਪਹ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਲ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਸਹਿ, ਸਗਲ ਬਿਆਲ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾ ਸੰਗ ਜਪਨਾ ਮਰਾਰੀ, ਤਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਪਰਮ ਗਉਣੂ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਣ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਏ, ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਰਾਹ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭੈ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ, ਅਣਕ ਵਾਰ नानक बलिहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन विखिया सगली शार हर हर नाम कमाउना नानक्यो तनसार अटपदे संजना मिल करो विचार एक सिमर नामदार और पाप सामीत बसारो कर्ण कर्ण हृदय में उतारो कर्ण कारण सो प्रभु सुनत दृढ़ कर गो नाम रहत ए तन संचो ओ भगवंत संजना का निर्भवंत एक आस राखो मन माहे सर्वलोक नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जे सो को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सोभा को करे पढ़ी करनी सा सोभा पजर की सरनी अणक पावी रोग न जाहे रोग मिटे अरोख दलाए सर्व नान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगे प्रवान मन प्रबोधो हर के नाही जय जिस थावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोई जा किर दे बसे असोए काल ताती ठांडा न हो सिमर सिमर सदा सुर पाओ ओ बिन से पूर्ण यासु भगत पाए आत्म प्रगासु तित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटी जम फांसी तात विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गौण मिठे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव यो रतन जन्म का ओए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अणक पाव न छूटन हारे सिमर सास्त बीज बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन पंचत नानक पल पाए सांग न चाल तेरे तना तू क्या लुटावे मूर्ख बना सोत मीत कटम्बर बनता एते कहो तवर कमर सुनाता राज रंग माया विस्तार एते कहो कौन छटकार आसक्ति रात सवारी झूठा टंग झूठ पसारी जिंदिए तिस बुझ न बगाना नाम सार नानक पछताना गुर की मातों ले आने भगत बनावो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए संभारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन जन्म के किल विख जाए आप जपो आवरा नाव जपाओ सुनत कहत रहत कर पाओ सार पूत सातर को नाओ सहज सफाए नान गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिनस जाए हामे बिक पैल ओए अचिंत बसे सुख नाल साध ग्रास हर नाम संभाल शाड़ सियाणप सगली मना सासंग पावे सचना हर पूंजी सच करो बिहार इहां सुख दरगे जयकार सर्ब निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एको सिमर एको मनाए एक सके गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक पवंत एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर्यो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक रात प्राप्त गए मंत्र अंतर एक प्रव्रता गुर प्रसाद नारकिक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रव्याया पर्या तो शरणाए नानकी प्रवीणती अपनी भगती लाए अटमले जाचक जन जाचे प्रवधान कर कृपा देवर नाम साजना की मांगो तुर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ साहस साहस प्रभु तुम्हें त्याओ चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नतनीत एक ओट एक आधार नानक मांगे ना प्रसार प्रभु की दिष्ट महास कोई रस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नए डलाने सो पर परे प्रेम के रंग सो पर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरण अण सब त्याग अंतर प्रगास अंध लाग बड़ पाकी यपया प्रसोए नानक नाम रते सुखोए सेव की मनसा पूरी पही सदगुर ते निर्मल मत लय जन को प्रभ होयो दयाल सेव किनो सदा निहाल बंधन काट मुगजन पया जन मरण दो परम गया एच पुन्नी सरदा सा पूरी राव रिया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाई नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिसरे ये काल न पाने सो क्यों बिसरे ये किया जाने सो क्यों बिसरे तिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे ये जीवन जिया सो क्यों बिसरे जगण में रखे गुरप्रसाद को बिरला लाके सो क्यों बिसरे ये बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गाड़े गुर पूरे तत एह बजाया प्रभु अपना नान जन त्याया साजन संत करो ए काम आप त्याग जपुर नाम सिमर सिमर सिर सब पाओ आप जपो अवरा नाम पाओ भगत पाए करिए संसार बिन भक्ति तन होसी चार सर्व कल्याण सुख नाम बूट जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मंत्र यंत्र यही सौ नेत्र पेक दर्शक होए मन विकसे साचर तोये पगजना के मंत्र अंग बिरला को पावे संग एक बस दीजिए करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रिहा सरसवाए प्रभुक्षण दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रपाल आल पुरख कारण करतार भगत ना के प्राण दार जो जो जपे सोए प्रीत भगत पाए लाए मनहीत हम निर्गुण यार नीचे जान नानक तुमरी सरण पुरख पान सर्व मुक्त मो पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाए बो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पड़ी सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सास प्रभु दियो नवास सर्वसो नुक पर गो सारे गुण धर्म गुण अहंकार सुन समाधि आप
0: आपन किया नानक आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार कछ न दृष्टि ताप आप तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब वैर विरोह के संत कमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोह का किस होत परम आपन खेला वर्ती जाना न करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक कह रगमा पार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण ब्रह्म सह सुभाई तब शिव शक्त कहो हो कित ठाई जब आप है आप अपनी ज्योत रहे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चल ताप कर निहार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन बकत तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप आपिय चर्जा नानक अपन रूप आपिय प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को कीस जय जोश रूपी जो संग समावै तय किस कवन तृप्तावै करण करावन करने हार नानक करते का नाहि समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत भाई जय सर्प कला आपे परवीन तय बेद कतेव कहा कुचीन जब अपने आप आपुर धार है तो सगन सगन कहा विचार है जय अपन ऊंचा अपन आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानु आप जय छल छेद पे सुमाया वहां किस व्याप्त माया गुआ पया देर त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपन आप अप त्यारा तय कौन कतः कौन सुनने हारा बहु बैंतूज ते ऊंचा नानक आपस गुआ पे पहुंचा जय पृथ्वी पर पंच कार त्यो गुण मैं किन्नु विस्तार पापुन ते पई कावत को नर को सुर बंछावत हाल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपखियान अपन खिलाप कर देख खेल संकुच तुआ नानक एक जय अभि भगत जय अभ्यगत भगत है आप जय अभिगत भगत है आप जय पुसर पासार संत प्रताप दू का काप्य तनि उनकी शोभा नू बनी आप कौत करे आनंद चो जा पैरस भोग निर्जोग जिस भावे तिस अपन ना इलावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेसुमार था गंत तोले जो बिलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टा अष्टपदि जा आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार चात भावे सृष्ट उपाय अपने पाने ले सुमाए तुम ते पे नहीं किछ होए अपन सु सब जगत पुरोय जाकू प्रभु जी आप बजाय सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेथा नानक सब सृष्ट का जीता ये जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को ना जिस रखे तिस को न मारे सो मुआ जिस मनो पिसार तिस तजबर कहा को जाए सब चरिख निरंजन राय जी की जुग जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो सात गुण निदान व्यंत पार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जामी रहो ब्या प्रतपाल जीवन बपा जो जो रुचि सो तिसे त्या जिस भावे सिले मिलाए भगत कर हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक जान्या जन लागा हर एक नाई जिसकी आस न मृथी जाए सेवक को सेवा बने आये हुक्म बूझ परम पद पाई स्त्री ऊपर नहीं विचार जा के मन बसया निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अंधन पूजा गुर के पैरे लोक सुखे पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मिले सार संग मिल करो आनंद गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देता करो उदार अमृत वचन के गुण गाव प्राण थन कह स्वाट पर प्रपे को नेरा मिठे ज्ञान बिन सह अंधेरा सुरपति सिरदय साहु मन छे नानक फल पावो हल फल दो राम नमन त्रुतार पूरे गुर की पूरी दिखा जिस मन बसैति साज परिख्या मंत्र नाम जपो लिवलाये दुख दर मन ते पो जाय सच व्यापार करो व्यापारी ना दर गहने बहके तुम्हारी काटे रखो मन माही नानक भौर न आवे जाहे तिस्ते दूर कहा को जाय उबरै रख नहार त्याय निरपो जपै सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभु राखै तिस नाहि दुख नाम जुगत मन हो सुख चिंता जाय मिटै अहंकार दिस जन को कोई न पहुंच न हार सिर उपर ठाडा गुरु सूरा नानक ताकि कार्य पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख दूधर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान तरजामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहूत निहाल ताकै निकट नयावत काल अमर भय अमरा पद पाया सा संग नानक हर ध्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कट माही अनक रंग नाना दृष्टाही नौ निदमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधन हथे नाथ कह न जाई चट विस्माद तीन देखिया साप दिखाए नान तीजन सो जी पाए सुअंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत तरन माहिया आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बै संतर माही चार कुंट दै दिसे समाही तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख सस्य सूर नक्षत्र मैं एक पाणी प्रभ की सब को बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला करके लकील मोल न पाइया गुने मूल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार्यो स्वामी ओत ओत गुरु प्रसाद भरम का नास नानक तिन में एहो विश्वास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होय सोई सुख मान करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख समूही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक ओंकार अनिकला लकी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज साप जनाए नान तिस जनया बुझाए सर्वभूता वरतारा सर्व नैना पे कनहारा सगल समग्री जाका तन आपन जसा पी सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की निमाया सब कह मद अलिप्त रहे जो कुछ रहना सुआपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाय इसते हुए सोना ही बुरा उरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू तत ने की आपे जाने अपने जी की आप साजधारी सब साज ओत पोत अपन संग्राजता की गतमित कही न जाए दूसर हुए तसो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख होया मिलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन कह है सुआउ जन कह संग चित आवे नाउ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाउ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गोतरंग संत जना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साथ संगा गुण सागर तरो हर तन के पर ले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजानंद साथ संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है धारू उत्तम श्लोक साध के वचन अमली कला ले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेवाल जंजाल विकार तेरा ते राम नाम सुन सुना कहते कर प्रसादया प्रवतारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत भी सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सुहोत निदान सर्व इच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न हो गया अवन जान हर तन घाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम कुशल सहजा खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कहमत सबल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल किस जन कै मुख भने गुरु नानक ना बचन मन सुने इहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपरासा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रपाई सा सर नानक ते आए जिस मन वसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन मरणता का दुख निवार है दुर्लभ दे तत्काल उदार है निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रोग बिन से पै परम साधना निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुख मनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुख मनी सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणप लख होहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मे होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मे बख्शीस एक हुक्मे सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाणै निशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर देह गावै को जपै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखै मंगै देह देह दात करे दातार फेर के अकै रखियै जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए

भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूरन होए चेत की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरू परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए। सब बैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आशा। तूर भजन की रह प्यासा, तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देवदायत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जिते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपने बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंग पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो। दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जी अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यय है, ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताकि ताप तनक मोह हरे हो। रिद सिद्ध कर मोह सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा।
ਖੜਗ ਕੇ ਤਮੈ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਬਰਾਤਾ, ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਕੋ ਸ਼ਾਇ ਕਰਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜਪ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ, ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ। ਅੜਿਲ ਸੁਨੈ ਗੂੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਜਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰੈ ਸਹਸ ਪਣਿਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹਿਜੈ, ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰਸ ਦਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ, ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ, ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੁਹਰਾ

कहे नानक से पवित जिने गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै विण सहजै सहसा न जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन तो बहु शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिनका हिर लया माया बोलन पै रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रता

सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी कृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसे विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिया विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग पिना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपियो जियो। लाह खटियो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए। कहे नानक एहो हर रस करमी पाई है सतगुरु मिले जिसे आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए।

ये शरीरा मेरे आ इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक इहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ये नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया इहो विश संसार तुम देख दे इहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक ए नेत्र अंध से सत गुर मिले देव दृष्ट होई ए सर्वण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए श्रीर लाए सुनो सत बाणी जित सुने मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी साचो अलख वेडाणी ताकी गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ दुआरे प्रगट किए दसवां

सच त्यावहे सच्चो त्यावै जात उद पावै गुरमुख जिना बुझावहे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कहे नानक सच सोहेला सच्चै कर गावहे।

दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी। सुनते

0: चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मांधाणिया अनगा पंखी पौंदिया लै नसा सूए चाड़ पुआई जंत नानक पौंदिया गणित ना अंत
1: मंदन बंत वाय सोए पै कृष्ण नचे सब कोय नच नच हसे चलने से रोए उड़ ना जाए सजना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी ना उतरन निरंकार है।

कहा जाता है, हम में कर्म कमाए, हम में ही बंधना फिर प्रजो नि पाए। हम में कितो उपजा कित संजमे जाए, हम में हुक्म है पय कृत विराए।

0: अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख खंदे पत गवाई विणावे किस थाए न पाई रह बेबाणी मरी मसाणी अंध न जाना फिर पछताणी
1: बेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सब पाए आस अंधे से तेने केवल हो मैं शब्द जला

बलिहारी कुद तपस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहा। जात मह जो जोत मह जाता कल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफ सवाल।

0: कुड़ी रास कुड़वा पार कुड़ बोर कर है आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कुड़ रहे भरपूर।
1: मथे टिक्का तेड़ धोती खाई हथ छुर जगत का साई नील बस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश धान ले पूजे प्राणा भाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर कसे न जा

क्या पढ़ी है क्या गुनिया क्या वेद पुराना सुनिया क्या पढ़ी है क्या गुनिया

तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी दाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द खनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाई सदा कुरबान कीता गुरु विटो जेदियां ए वडियाईयां कहे नानक सुनो संतो शब थरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सपागै कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तदवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे अन सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल

निदान अमृत सारू सद ही भर पूरा रहाउ चरण कमल रिद अंतर तारी प्रगटी जोत मिल राम प्यारे पंच सखी मिल

जात उदभावै ता हर गुण गाओ, तेरे घर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिब अलख अभेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूप अर रंगा। करै न झुरै न मन रोवन हारा, अविनाशी अविग

रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बिरानी ऐसे गुनहा अच्छा द्यो प्राणी तिस्यों लूक जो सद ही संगी काम न आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला ज्यों पावे त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा

ठाकुर की, भरपुर तार रही शोभा जाकी रहाओ। नाम निदान जाकी निर्मल सोए, आपे करता अवर न कोए। जी जंत सब ताके हाथ, रव रहे आप।

गुर का दर्शन संचो हर धन, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, त्यावो गावो गुण गोविंदा, अत प्रीतम मोहिला गैनाउ रहाउ। तृप्त अगावन साचे नाए, अठसठ मज्जन संत दूराए, अठसठ मज्जन संत दूराए, सब

हर रस साधु हाट समाए, लाख करोरी मिले न केहे, जिसे प्राप्त तिस ही देहे, नानक चाक भए बिस्माद, नानक गुरते आया साध, ईत ऊत कत छोड न जाए, नानक गीधा हर रस माहि। आसा महला पंजवां।

गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा घर पंजवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ब्रह्म है सोई सगल जग

आगे मुस मुस रोई। गोविंद भजन की मत है हूरा, वर्मी मारी सांप न मरी, नाम न सुनी डोरा रहाऊ, माया की

अत जोग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किछ जाने, उसते कहा छुपाया, कूड़ कपट बंच निमुनिया।

सगल सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुरु आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखै लाए सरदा ताका जन्म मरण दुख भागै ऐसी निरत नरक निवारै नानक गुरमुख जागै आसा महला पंजवां।

हार धन निर्मल गाठे, अंत काल प्रभ भये सहाई। इत उतराखन हारे प्राण मीत हीत धन मेरा, नानक सद बलिहारे। आसा महला पंजवा, जा तू साहिब ता पौ केहा, हौं तुद बिन किस सालाही। एक तू ता सब किच है, मैं तुद बिन दूजा नाही।

बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकूरते बाहा पकर गुर काढ़ लिए, निर्भव पहे सगल भव मिटिया।

जप अमृत हर रसना, तन धन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया गुर प्रसाद भय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने भाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद कुरबाणी, आसा महला पंजवां।

कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तैतन सोहया सुरजन भानी ता मन मोहया कवन बनीरी तेरी लाली कवन रंग तू भई गुलाली रहा तुम ही सुंदर तुम है सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम भानी।

मेरी रहाव, निकट आन प्रै सेज धरी, कान कडन ते छूट परी, मंदर मेरा शब्द उजारा, अनद विनोदी खसम हमारा, मस्तक भाग मैं फिर घर आया, फिर सुहाग नानक जन पाया, आसा महला पंजवां, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल मह कौला रहा, मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपने तरता, दीस आवत है बहुत।

रहाउ। तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया।

पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल न काई अमृत फल नाम जिन गुरु ते पाया नानक दास करी तिन माया।

पाई, सर्व सुखा बने तिरे ओ लै, भ्रम के परदे सतगुर खोले रहाओ, हुक्म बूझ रंग रसमाणी, सतगुर सेवा महानिर्वाणी, जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्वाण, जाको मिलियो नाम निदाना, भणत नानक ताका पूर खजाना, आसा महला पंजवां।

विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, गृष्ट में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वसियाया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाइए।

जल गया, जन्म मरण दुख रंग गया, का प्राप्ति लिया मिला है, नानक भक्ति नाम समाये, शोक विग्रह जी सब पी दिया, शोक विग्रह जी जीवन दिया, के काटे जन्म जन्म का टूटा काटे, करो एक काम आम क्या जपो हर नाम, गाय करिए संसार में भक्ति करो शीचार, दूसरा हो अपना नानक नाम जपो गुस्सा, पेट दर्द सुखो